सतगुर प्रसाद सो दार तेरा के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी स्यों कहिया है केते तेरे गामन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन

चारे गावण तुदनो जति सती संतोखी गावण तुदनो वीर करारे गावण तुदनो पंडित पढ़ नरखीसर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मछ पयाले गावण तुदनो रतनो पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले।

जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भंती कर कर जिनसी माया जिनु पाई कर कर देखा कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी।

सुने गुंग जो याहे सोरसना पावई, सुने मूढ़ चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द भवन गणना नर के रहा, वो जो याकी एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस मुंतीन कह जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समापतम, सत शुभम सत अभजू, दोहरा दा जान करदास पर की जय कृपा अपार, आप हाद राख मोहे मान क्रम बचन विचार, चौपाई मैना ग्रश प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कबू नैत आऊ, कान सुने पहचान न तिन साओ, लिवलागी मोरी पग इन साओ, महाकार रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बह गहे की लाज विचार, अपना जान मुझे प्रत प्रिय,

महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जेवा जब गुरु नाउ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाउ सतगुरु सेती रत्या दरगाह पाई ठाउ कहो नानक कृपा करे जिसनु एवा दे जग में उत्तम काढ़ी है विरले के ही के महला पंजवा रखे रखन हार आप वारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होवा आप दयाल मनोना विसारियन साध जना कै संग पव जल तारियन सागत निंदक दुष्ट के माहे बेदा।

Man Pratakh Guru Nishtare Bani Birlau Vicharsi Jeko Gurmukh Hoye Eh Bani Mahapurkh Ki निज घर वासा होए बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बुले सतनाम धन वाहे गुरु जी सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पेर वण जारा राम सखी हो सही लड़ी हो मेरा पेर वणजारा आराम हार नामो वणंजड़िया रास मोल अपारा राम

हस्ती देख परम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, तेनू अमान है अपने हाथी घोड़िया ते। हस्ती देख परम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, अख लगा महाराज गुस्सा ना करो, उथे ते रात नू कोई गिलास विच कोई पाइया अद्धा पाइया दुध भी नहीं मिलिया होना, ते कहन लगे तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। उदे हथां दा जेड़ा पानी सी ना, उदे नेत्रां विचों जेड़े वाइब्रेशन निकल रहे सन ना, और जो रसायनक क्रिया वापरी वह प्रेमी दे फड़न नाल, वह तेरे दुध नू परां करदा सी पिया। उदा पानी अमृत वर्गा सी, बड़ा आनंद आया उदा जल छक के। मैं ते कई वरां मंग मंग के उदे कोलों पानी पीता, क्योंकि वह स्वादी बड़ा सी। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मान्या, सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो, गुर सिखो हर करता आप मुंह कढाए। एक गुरु की बाणी कह रही है, कहन लगा ये अमृत वर्गा जल सी। कहन लगे महाराज असी ते खीर बनाई सी ड्राई फ्रूट पा के बड़ी रीझ नाल, उन्हें तो बेचारे ने इधरों उधरों चलाई तोड़ के बाथू तोड़ के गरीब ने साग सूग ही बनाया होना है। हुण तो साग बड़ी वड्डी गल असी समझने, वैसे खिमा करना गरीबां दा भोजन सी, जिन्हों कुछ नहीं लभदा, वह जंगल होंदे रहे इधरों उधरों तोड़ के उन्हें बना लेने, विच लूण मिर्च पा लेनी, दो रोटियां खा लेनी। कह लगे उत्थे तो साग ही मिलिया होना है। कह लगे खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैण विहाणी। एक दे मैनू प्यार मिलिया, ते एक दुर्योधन जे मैं तेरे कोल आउंदा ते तू सारी रात मेरे कन्न भरने सन, बई पांडवां ने ऐ कीता पांडवां ने ओह कीता, सारी रात निंदा तू करनी सी, ते मजबूरी विच मैनू निंदा सुननी पैनी सी। और तेनू पता उत्थे की कीता, ना कोई मंजा ना कोई बिस्तरा ना कोई बहन लई कुर्सियां, एक चुल दे अगे दो इटां सन, एक इट ते ओह बैठा सी, एक इट दे उत्ते मैं बैठा सा, सानू पता ही नहीं लगा भी सारी रात गल्लां करदिया दिन कदों चढ़ गए। रैण विहाणी, रैण सबाई कीर्तन ही हो गया। कबीर को ठाकर आनंद बनोदी, जात ना काहू की मानी। ओ नहीं देखदा गरीबी नू, ओ नहीं देखदा अमीरी नू, ओ नहीं देखदा किसे दे लिविंग स्टैंडर्ड नू। चलो होने वाले धार्मिक बंदे ते देखदे ने, लिफाफा वड्डा कित्थों मिलेगा, कित्थों मिलेगा ते कित्थों नहीं मिलेगा, पर सची मुची दे जेड़े ने वो प्रेम देखते ने। इसलिए सखी हो सहेलड़ी हो, मेरा पेर वणजारा राम हर नामो वणन जड़िया। तुहाडे कोल ते पोथा साहब नहीं, मेरे कोल है। इत्थे जेड़ा नामो लिखे है ना, मैं नामो पढ़िया है, नन्ने कन्ना मम्मा, मम्मे नू होड़ा भी है ते औंकड़ भी है। हुण साडे इत्थे ग्रैमर विच किसे भी अखर नू दो नुकते लगे होण, उह उचारण नहीं किते जा सकते। हुण इत्थे बंदा कवे मैं होड़ा भी उचारण करना है ते औंकड़ भी उचारण करनी है, ये पॉसीबल नहीं है। फिर ये जदों सिख दे सिखांदे सां ते उस्ताद कहिंदे हुण जिथे ये सिस्टम आ जाए उत्थे उल्टा उचारण करना है। आम तौर ते शब्द नाम है, नामो बहुत घट है, इहदा उचारण नाम नहीं करना, नामो करना है। औंकड़ साइलेंट करनी है, होड़ा बुलाना है। हर नामो वण जड़िया रस मोल अपारा राम। ओ सखियां सहेलियां जिन्हां ने हरी दे नाम दा वणज कीता है, उन्हां दा जीवन रस नाल भर गया, और ओ सिख कह लईए गुरमुख सखियां कह लईए, उन्हां दा कोई मुल नहीं, उन्हां दा कोई पारावार नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हां ना विसरै नाम से किने आ, भेद ना जानो मूल साई जे है। जिन्हां नू विसरदा नहीं, जेड़े जपदे ने वो जपदे जपदे उस जपण वाले वर्गे ही हो जांदे। मूल अमोलो सच कर ढोलो, उन्हां दा मुल अमुल हो जांदा है, वो उन्हां दी कोई कीमत अता नहीं कर सकदा। सदा थिर अकाल पुरख वाहगुरु नू वो ढोलो प्यारे लगदे ने, प्रभ भावै तां मुंद भली। प्रभु नू जेड़ी जीव इस्त्री पा जाए वो प्रवान है,
ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵ ਦਾ, ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਹੁਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲਾ ਦਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗ ਹਰ ਕਹਿ ਕਰੈ ਰਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਰ ਖਲੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਦਰ ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਧਰੇ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੋਚੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਾਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਜਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿ

वारु श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाए अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस डिठे शब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरिया करुणाओं ने ध्याताए सब थाई हुए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी इन वाणिया दे मान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पार बख्शा कीती अमृत तो लैके सुंदर सिंघासन ते सज के संतां नूं दर्शन दारे बख्शे आप जी दा कोट कोटान शुक्र है सुले आप जी दी हजूर संदत वान दी समाप्ति तो परंत आप जी दे पितृ स्वरूप जी सुखा सुने सोहला बाणी दे जाप समचियां सेवा मन बंदे भुला दी माफी बख्शो अगाह वास समत बख्शनी आप जी दे भाण विचार पहर दिन सुखा नाल बतीत रहना आप जी दे भाण विच बतीत होवे सतगुरु जी कृपा करो सुखासन त्यार नाम चल के विराज मनो संतां नूं खुशियां बख्शो अमृत जागृत विश्व दर्शन दारे बख्शने से प्यारे मेल जनाम ले नाम चेता।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

मंदर रंगर तेरंग एक नानक जन का बिरत बबेका अरका नाम जन को मुकत जुग तरके नाम जन का उतरबत भुगत अरका नाम जन का रूप रंग हर नाम जबद का पर न भंग अरका नाम जन की वडियाई हर के नाम जन सो बाबाई

बाहर पे एक अंतरमल पाया शब सनायक शकरेश पाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे रोभ समान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसै प्रभु आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गए लेहो ओड़ निभावै कहा बुझारत बुझे डोरा निस कहिय तो समझे पूरा कहा बिसनबद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल परबत पर भमन नहीं हो तो ऊहा उस गमन करतार करुणा में दीन बेनती ना करे नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलवा कै ग्रह पितर बसे अंध केर माया रंग रसै दृढ़कर मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोत्रो याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो आपन कर कर्म।

पत जाए अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त गान भी खोट गवावे। एक पीना दे दस भी हेरले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको की जाए साधन मस्कारा। जाके मन लागा बन मीठा, सर्व सुखता हूँ मन बुठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। गंत शाह अपनी दे रास, खात पीत बरते अंत उलास। अपनी अमान कश अहुर शाले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीता भी खोवे, और उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सरबर होवत जान अनेत। बिरकी छाया सिव रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पछतावे। जो दिसा है सो चालन हार, लपट रहे होते अंधार। बटाऊ से जो लावे ने, ताकू हाथ ना आवे कहे। मन हर के नाम की प्रीस खुदाई।

मोद बिकराल मिथ्या रथ अस्ति अशुभ वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप शुभ्र कर्तु गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिरूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार गोदावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या धन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब

प्रभु को सा चितारी निब्र सा तेरा सुंदर रूप सौभ्रभ सिमरो सदा अनूप निब्र सा तेरी निकी जात सौभ्रभ सिमर सदा दिन रात जिब्र सा तेरी पत रह गुरप्रसाद नानक जस कह जिप्रसाद सुने करण नाद जिप्रसाद वेखे बिस्माद जिप्रसाद बोले अमृत रसना जिप्रसाद सुख सहजे बसना जिप्रसाद हस कर चले।

ब्रह्मज्ञानी सर्वगा ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मत गौन बखान ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाना ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्मज्ञानी गौ सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीवा नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता।

बाहु लश्कर मानुख पुर करे आस बल भीतर ताका हुए बिना सपते आप जाने बलवंत किन में हो जाए बसवंत किसी न बदयाब अहंकारी धर्म राय दस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे बिमान सोजन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म कराया हूं तारे शर्म पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवाए हर दरगे को कैसे गवाए आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मनु हे कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लोग जाने मौजते का सोए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग तर

राजा स्वप्न मनोरथ ब्रिथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख ए बट भागी किसे प्राप्त होय करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जा करण करावन करने आस के आद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप रब सोए जो कि किनो

हीन। संत के हृदय को रखे न गोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तरा। संत के दुखन दे मुख पवै, संतन के दुखन काग जो लवै। संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन तृग जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जलाय, संत के दुखन सबको शलाय। संत के दुखन ते

राष्ट्रपति संजना मिलकरो विचार एक सिमर नाम आधार आवर पाप समीत विसारो चरण कमल हृदय वरतारो करण कान सो प्राप समराथ दृढ़कर गह हो नाम रथ एतन संचो होवो भगवान संजना का निर्मल मन देगा सराखो मन माहे सर्वरोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण टूटता में सो तन हर सेवा ते पामे जिस सुख को बाछे बीत सो सुख साधु संग परि जिस शोभा को करे भल किरण भली करणी सा शोभा बज हर की सरणी अनुगो बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर आप खदलाए

अष्टपदे आप कथे आप सुन्ने हार आपे का विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न ही किशो आप सु सब जगत परोए जागो प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो सम दर्शी दत का बेता नानक सब सेठ का जेता जी जंदर सब ताके हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तस कोई ना मारे सो बुआ जमनो बिसारे तस्त अबर गां को

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उदरा चिंद आस अनत्यागो तरंग समझना की धूर मन मांगा आप छोट बेनती करो सा संग अगन सागर तरहो हर धन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पाज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चेत चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का इह आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप त्राय लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागा मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल मांद कै माथे नानक उधरे तिनकै साथे शरण जोग सुन सरणी।

प्रभु की सतगुरु संत मीत सावधान गागर जीत सुखमनि सहित गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सोत निदान सर विच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सबन होए सब देव जपाया स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नभ निध बुद्ध ज्ञान सर्वदय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सकल देव दास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख भने।

चार गावे को साज करे तन खे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादर दूर कथना कथी ना आवे तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट, कोट।

मन कोय मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल भवन की सुध मन मोह चोटा ना खाए मन जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तपता असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मौन लिवलाय तार

असंख मूर्खांत घोर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मिलेच मल भख खाहे असंख निंदक

निरंकार असंख्य नाव असंख्य थाव अगम अगम असंख्य लो असंख्य कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान जिन ए लिखे

आवह जाहु तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाहु अंतर्गत तीर्थ

करह बखियान। आख है भर में आख है अंध, आख है गोपी तय गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध।

இருக்கிறாரு. காவன பண்டது படனர் கீசர் ஜோக ஜோக வேதானாலே காவே மோகனியா மன மோகன சுர்காமாச்சுப்பயாலே காவன ரத்ன உபாய தேரே அர்சர் தீர்த்தனாலே गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खांड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुद नो गावे जोध तुद पावनम

को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कहिजय कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय तिरपहम महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भजंग प्रयाशंद नवाह तवंग अकाले नवाह तवंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काय नमस्तंग जाय नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्म।

सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेखे वेद प्राण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेखे

पहुंच खपेंगे। सास मुंह परेशान फिर जग सत्र सबे अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र रात बजाऊ त्रिलोक को राज करेंगे। कोड़ स्नान के जाद के दान अनेक स्वयं साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर।

देखे किता पड़दर कच्ची पक्की सारी है, जो आए सो चासी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है कसाय मनव सारी है, अपना हथिया अपना आया पी का सवारी है।

करे। गाव हे इंद्राद भगत पहलाद आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो।